में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई तो नियामत भी आई, मोहम्मद की शान रिसालत भी आई, सरे पुश्त मोहरे नबूवत भी आई, बड़ी बात ये है शरीयत भी आई, विलायत भी आई, करामत भी आई, सारी दस्त दामाने ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं। सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे राह मश

पार अच्छा हो गया, कैसा ही तूफा हो लेकिन पार बेड़ा हो गया। या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आप

बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबाए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नाले ने मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

0: छुटकी कहेंगी, अपने आप को बहुत चला।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो, अब मैं छुटकी नहीं हूं।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।